0: सोई करावे।
1: इसके हाथों ता सब कुछ ले,
0: जो तिस पावे सोई करे।
1: अनजानत विख्या में रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे।
1: पर मैं भूला दे दिस्तावे,
0: निमक माए चार कुंड फेरे आवे।
1: कर कृपा जिसे अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले।
1: खिन में नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब निवाज।
1: जाका दृश्य कछु ना आवे,
0: ते सत्काल दे दिस प्रगट आवे।
1: जाको अपनी करे बख्शीश,
0: ताका लेखा ना गणे जगदीश।

0: संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिग

0: गतमित कोई न लाखे।
1: प्रभु के सेवक को नाम पहुँचे,
0: प्रभु के सेवक हो जाए उचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया।
1: नीके केरी में कल रखे,
0: पसंद करे लश्कर कोट लाखे।

एक ओंकार तो लेकर के 18-10-20 तक अपने कंठागर तो अपनी रसना तो बोल के भाई मनी सिंह जी नू लिखारी ला के लिखवाई है। उस वेले साध सिंह जी अमृत वेले तो लैके दोपहर दे समय तक जिन्नी बाणी लिखी जांदी सी शाम दे दीवाना दे अंदर सारी बाणी दी व्याख्या महाराज साहब सच्चे पातशाह जी और बाणी दा शुद्ध उचारण बाणी दी शुद्ध व्याख्या महाराज साहब जी आप अपने उन्हां 48 सिखां नूं जो महाराज जी दे नाल उस वेले मौजूद सन हर रोज संध्या दे दीवाना दे विच सुनाया करदे सन।

ख्याल जां सोशल मीडिया ते चलण वाले ख्याल सुन के राजी हो गया। जे माफ करना थोड़े बच्चे कोई इंजीनियर बनन जांदा है, कोई आईटी सेक्टर च जांदा है, कोई आईपीएस पीसीएस बनन जांदा, कोई कुछ बनन जांदा है, कोई कुछ बनन जांदा है, ते जे उत्थे बैठे अध्यापक उन्हां नूं सोशल मीडिया दियां आम संसार दियां गल्लां सुना सुना के तोर देणगे, दसो थोड़े बच्चे डॉक्टर बनणगे कदे? कदे थोड़े बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकणगे? कोई आईपीएस पीसीएस बन सकणगे? क्यों? उन्हां नूं उस विषय की पढ़ाई ही नहीं कराई गई, उन्हां नूं उस विषय का डीपली ज्ञान ही नहीं दिता गया, तो उन्हां बनना कित्थे है? असी महाराज साहब जी की हजूरी च आउने आ, सारे बंदे गल्लां करदे आ जी सिक्खी च कमी आ गई है, सिक्खी दियां क्लासां ही प्रॉपर नहीं लगदियां, तो फिर किता की जाए? पावन बाणी जो वचन कर रही है पॉइंट टू पॉइंट संगत तक कन्वे नहीं हो रहा, तो फिर किता की जाए? बच्चों तक नहीं पहुँचा पा रहे, किता की जाए? सारे पासे आपो धापी पई पई है, तो महाराज का महाराज के बचनों का कोई ख्याल नहीं है। इस करके घट तो घट संगत चाहे इन्हां चीज़ां नूं सुधार सकती है, चाहे मैं होवां चाहे कोई होर होवे, जितों भी गुरबाणी की व्याख्या तुसी सुननी है उन्हां नूं हाथ जोड़ के बेनती करिया करो, भाई साहेब शब्द की व्याख्या शब्द के नेड़े रह के करिया करो, अपने मन दियां गल्लां लोकां दे मनां दियां गल्लां ना सुनाया करो।

सतगुरु जी की कैसी बख्शिश है। देखो सतगुरु सानू ताकीद भी कर रहे हैं कि उस वाहिगुरु नूं ध्याओ, राम राम जपो, तो जप के कदे यह नहीं सोचना कि उस वाहिगुरु का असी अंत पा लिया है। सिर्फ उहदे अगे अरदास ही करनी है कि वाहिगुरु असी भुलणहार जीव हाँ, तुसी बख्शणहार हो, असी पापी हाँ, तुसी पापियां नूं तारन वाले हो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। ये अरदास करनी हमेशा। कदे सतगुरु कहिंदे अपने मन दे विच होमे नहीं लैके आउणे कि मैं बहुत ध्यांदा हाँ, बहुत सिमरन करदा, बहुत सेवा करदा हाँ, ये सब फिर बिरथा चलिया जाएगा। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का बचन है, तीर्थ बरत अरदान कर मन मह धरै गुमान, नानक निहफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। जिस तरह हाथी नूं कोई नवा दे तो फिर बाहर आके सिर च खेह पा लैंदा है अपनी सुंड दे नाल। ते सतगुर कहिंदे जे कोई चंगा कम करके, दान पुन करके, सिमरन करके, सेवा करके मन दे विच गुमान करता है, हंकार करता है कि मैं कुछ किया है, तो सतगुर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहिंदे ओ फिर इस तरह निफल चलिया जाता है जिस तरह वह हाथी का किया होया इशनान, जिदा कोई मतलब नहीं रह जाता बाद। सो इस करके सतगुरु जी दे अगे हमेशा अरदास करनी है, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुमाती, जी राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। असी तुहाडे बच्चे हाँ सतगुरु जी, तुसी सानू पालन वाले हो, साडी प्रतपालना करन वाले हो। जे तुसी जपाउंदे हो ते तुहाडी कृपा दे नाल जपिया जांदा, जे सेवा करदे हां ते तुहाडी कृपा दे नाल हुंदी है। मतां साडे विच कोई ताकत नहीं असी कुछ कर सकते, साढ़े तो इन्नी ताकत नहीं कि असी मूँह चो कोई बोल बोल सकीए। सतगुरु जी का बचन है, ता मैं कहया कहन जां तुझे कहाया। सतगुरु तो इन्नी नम्रता दे नाल बाणी विच गल करदे ने, मैं ता ही बोल सकता हाँ वाहिगुरु जे तू बुलाउंदा है, बुलाया बोली तेरा। सो आओ मता ये सतगुर कहिंदे फिर राम राम जप के कितें मन दे विच हंकार आ जाए, तो नाल दे शब्द सतगुर ने कहता राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। वह बहुत वड्डा है, उहदा कोई अंत नहीं है, उहदा अंतला पारला बना कोई नहीं है। बस उहनूं ध्या सकते हाँ, तो जदों उहनूं ध्याउणा शुरू करता तो वह फिर अपने वर्गे बना लैंदा है। ये उहदी दयालता है, कृपालता है। आओ सारे इस पावन शब्द नाल जुड़िए।

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिह जिठे शब्द जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दया विताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जीओ सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया।

बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रहाओ। विश्वे चस्या कड़िया पहराओ, तिथि वारी मा हुआ, सूरज कोरत अनेक, नानक करते के कहते वेश।

0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: थोड़ा बोल दिया ना बेगा, थोड़ी बेगा,
0: Vaheguru, Vaheguru,
1: ठीक है।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु

संयमत साधन निमख निम कर शरीर घटावे तापी होमे मैल ना जावे। अर्खे नाम संसर्गाश नाहे नार गुरमुख नाम जब जगत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमान न मनते हुटै। सूझ करै दिन सर रात मन की मैल न तनते जात। इस देही का बहु साधना करै मनते कबू न मिख्या टरै। जल तो वे बहु दया नीत शुद्ध कावे काची पीत।

प्रसंग में छे। जो षडना स्वस्त्र कर माने, जो होमन सो दूर पराने, छूट जाए तिसका श्रम करे, संग सहित पर हर चंदन लेप उतारे, तुहे गर्द प्रीत पसम संग होए। अंधकूप में पथ बिकरार, नानक काढ़ लियो प्रभु दयार। करतूत पशु की मानस जात, लोक बचारा करे दिन रात, बाहर भेखंतर मल माया, शब्सनाए कश करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान शनान, अंतर व्यापै लोभ सुमान, अंतर अग्न बार्तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरा अथाह, जाके अंतर बसे प्रभाव, नानक दे जन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेहोड़ निभावे, कहाँ बुझारत बुझे डूरा, निष्कय तो समझे पूरा, कहाँ बिसन बद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग,

अष्टपदी दस वसूले पाछे बाबे एक बस्तखान मिखोट गवावे एक बीना दे दस भी हरले तो मुड़ा कहो कहा करे जिसा गुरु से नाही चारा तागो की जय सदनम सकारा जाके मन लागा अपना मीठा सर्व सुख ताहू मन बुठा

मिथ्यारथ अस्ति आसम वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रोम अभिमान मिथ्या पुष्पुर कर तुगमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्व नंबर निंदा सुने मिथ्या स्पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखद पार तरे रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार गोताव मिथ्या मन पर लुभावे मिथ्या तन नहीं पार उपकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन भुजे मिथ्या सब

ऐसा प्रभु त्याग प्रगत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनो बेसार।

साधु की शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिला है, साधक संग सदा पर फुला है, साधक संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा, साध संग में सब

सुंदरा सा सुंदरा सा साधक संग सुनो हर नाव सा संग हर के गुण गाओ साधक संग ना मनते बिसरा सा संग सर भर निस्तराय साधक संग लगे बरा मीठा साधु गय संग घटगा डीठा सा संग भया गया गारी सा संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बैठे संजोग साध की महिमा वेदना जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उपमा तह गुण थे दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मोचते मुची।

था। करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते ठरा। इंद्री जित पंज दोख ते रहत नानकूट मते को ऐसा अपरस, वैष्णो सहज सुप्र सुप्रसन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो बिन कर्म दस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू बल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राचे, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर अवध कृपाल, आप दृढ़ वे अभरे नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत भावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मंदे बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साह संग, पापा मन खोबे तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मंथन अर्पय विशन प्रीत, अर्घे चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सारथ पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, भेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुखम है जाने अस्थूल, चावर न गो दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहुवर नाम है जपे कहु नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए सास संग पावे जन कोए, कर गिरबंतर उतारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्वरूप का औखद राम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत।

नर्ग स्वर्ग फिर फिर अवतार अनग जतन करे आत्म नहीं द्रवय हर दुर्गे को कैसे गवाए। आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मनुहे कहो नानक ताकि निर्मल सोए।

अवतार राष्ट्रपति सांद गए दुख ने आर जा कठ है सांद गए दुख ने जमते नहीं छुटा है सांद गए दुख ने सुख सब जाए सांद गए दुख नरक में पाए सांद गए दुख ने मत हो मलहीन

संगा दुखी सदा अभवेत संगा दुखी किसे का नहीं बेत संगे दुखी को डान लागे संगे दुखी को सब त्याग गए संगा दुखी मां अहंकारी संगा दुखी सदा बेकारी संगा दुखी जन्मय मरे संगी दुख ना सुखते ठहरा संगे दुखी को ना ही ठाहो नान संभावे संत भावे तलय मिलाए संगा दुखी अद बीते टूटा है संगा दुखी किते काज ना पहुंचा है संगे दुखी को ध्यान प्रभाई है संगा दुखी उजड़ पाई है संगा दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृत की लोता संगे दुखी की जड़ किश ना है आपन भी जापे ही खाए संगे दुखी को वरना राखन हार नानक संत भावे तलय उबहार संगा दुखी एवं बिल लाए जल भी ऊन मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इंद्र नहीं त्रापे संगा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुविला संगा दुखी धर्म ते रहत संगा दुखी सद मिथ्या कहत कीर्तनंद का तुरही पया नानक ज्योत सुभावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पे जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाई है संगा दुखी ना मरे ना जीवाई है संगे दुखी की पूजे ना आशा संगा दुखी उठ चले निराशा संगे दुख ना तृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा को हे नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ तिस्को करने हार सदा सदा तिस्को नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से ध्यावो सास

योगिशरासु प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वैस होए करने हर पछाण सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसे उपजे समाहे समाहे।

जीवंतकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माहौ ध्यान में मार्ग भावे तुम साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संदन की बांछो दूर नानक की अरुचा पूर मर मूर्ख काय बिर लाइये प्रभु लिखे का लिखिया पाइये।

देव जनरमण ए करणी कर गिर बस गो नाम दिया नानक सोजन दरबण थीया जाके मन गुरु की प्रतीत तजया तजन आवे हर ब्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एक सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सतमुख कहत

जो होवा हो सो जाने, पर अपने का उप पछाने, तुझकी महिमा कौन बखाना, तुझका गुण का एक ना जानो। आठ पैर प्रभ से अजूरे कौ नानक से जन पूरे, मन मेरे जिन की ओटले मंथन अपना तिन जन देह, जिंजन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्वथो का दाता, तुझकी शरण सर्व सुख पाव, तिसके तरसप पाप मिटा।

राष्ट्रपति, आप कथे आप सुनने आपे का विस्तार, जात सुभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए, तुम ते भिन्न नहीं किछु आपन सु सब जगत परोए, जागो प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन जन पाए, सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ, जिस राखे तुस कोई ना मारे सो मुआ, जिस मनो बिसारे तज अवर कांगो जाए सब श्रेक निरंजन रा।

समाये इस्ते हुए सो नाही बुरा उरा कहो के न कश करा आप भला कर तू तरीकी आप जाने अपने जी की आप साज धारी समसाज ओत बोत।

हुक्म ही होवन आकार हुक्म न कहया जाय। हुक्म ही होवन जिया हुक्म मिलै वडियाई। हुक्म ही उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ। एक ना हुक्मी बख शीस एक हुक्मी सदा पवाईऐ।

दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाई। गुर ईस

तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह।

असंख मूर्ख अंध कोहर असंख चोर राम कोहर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मिले मल पाख खाहे असंख निंदक

निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा

सोई। किव करे आखा किव साला ही क्या वरनी किव जाना। नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा।

गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दान में आखे देव आखे सुर नर मुंडन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गुप्त लेख जाने, लेख लेख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावे अंधिदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनी उपाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले। गावे है जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे। से ही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साटी, नाई है पी हो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई।

दुख है, के सर्वत्र तरान है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पहन है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कली में, के परमं फही में, के आकल अलाम है, के सहव कलाम है,

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मु बद कियो, कर कर के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशांत।

और नानक अंत न जापनी हरता के पार वार आप करे साफी बरा करे मार एक नगली जंजीरी एक त्रिछड़ी बिछियार आप करे करे हो क्या सु करे पुकार नानक करना जिनकी।

बहुत मीठा है। संतो चक के देखो कितना मीठा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक किताब के बचन आंदा ना महाराज जी कहते हैं भी कहो कबीर गुंगा गुड़ खाया पुछे दे के गई है। जिहड़ी साधक की अवस्था आ जिथे तक भगत की आत्मग्ञानी की अवस्था आ उहदे लई कहना औखा हुंदा भी किहो जिहा रस है। मालक लई कहना मालक लई दसना कोई औखा नहीं क्योंकि महाराज की अवस्था जिहड़ी उच्ची है महाराज की जिहड़ी ताकत है वह वक्री हुई है। ता ही फिर वह गल्लां जिहड़ियां साधु संत उच्च अवस्था वाले बयान नहीं कर सकते सतगुरु बाणी च सहज ही बयान कर जांदे आ। क्यों सतगुरु पारब्रह्म परमेश्वर ही ने अपने आप उन्हां दी मर्जी अपने बारे जो मर्जी दस देण उन्हां नूं किहड़ा कोई रोक है भाई। इसे करके कहिंदे हर मिठा हर संतो चाक दिखो। वो गुरमुखो वाहिगुरु का नाम बड़ा मिठा चख के देखो। गुरमत हर रस मिठा लागा जिन्होंने गुरु की मत धारण की है उन्होंने हरी का रस मिठा लग्या। तिन बिसरे सब बिखरसो उन्होंने सारे विषयां दे विकारां दे रस विसर गए ने।

जाएगा। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। महाराज गुरु रामदास जी कहते भाई गुरु की मत नू धारण करके वाहिगुरु जपो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन चार पदार्थ जिहड़े मंगदे हो वो चारे तुहाडे कदमां च होणगे, उन्हां चारां पदार्थां नू हासिल कर लौंगे, मुड़ के किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईआं भुल्लां दी खीमा वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुर ता पाया सहज सेती।

ताणया मिन थम्मा गगन रहाय शब्द निसाणया सूरज चांद उपाए जोत सुमाणया किए रात दिन अंत चोज बडाणया तीर्थ धर्म विचार नावन पुरबाणया।

किछु न जाए, सच्चा सैब मन वसै ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लाए न पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजण।

अपनाया तिस गणी जे होमे विचों जाए जे होमे विचों जाए ता के ही गणत गणी मन मुख मोह गुबार ज्यों भुला मजमणी कटे पाप असंख नाम एक कनी सलोक महला तीजा बाबी हे खसमे का महल न जानई महल देखी अरदास पाए अपने भाणे बहुता बोलै

दल तारण हार शब्द पछाणिए चोर यार युआर पीड़े कहानी आए निंदक लाए तुबार मिले हड़वाणिए गुरमुख सच समाए।

अंधे का नाव पारखू एवे करे गवाओ, इल्त का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानी है

तुह उतरै भवन गन्ना तू आया खे हों बिद हौ बहु बिद हछा तुए बहुत बिकारा एते रास छोड़ हुवे सुनयासी नानक कहे विचारा पौड़ी हौ काया खा एक जीव तेरा अंत नक नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझ ही महे सुमाया एक भगवा वेस कर परम दे बिन सतगुर किने ना पाया देश

हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा, जिन तारियो हर रस कर साक। हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बशराक। हर के संत जना में हर हर ते जानी।

जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोबिंद माधो हर हर अगमिय गादो मत गुरमत हर प्रभ लादो तुर हो लिखे लादो राम बिख माया संच बोचते बिकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यों शोहे पारस मनूर भय कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमती सुधहादो ज्यों काष्ट संग लोहा बोतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार इस राम है कोई मिले गुरु गुर नानक जो सो आप तरे कुल सगल तरादो कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाऊ तेरे जन त्यावे एक मन एक चित ते साधु सुख पावे

सादारे कोट पराधी खिन मैं तारे जा को चीत आवे गुरे अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सदगुरु अपना राखे सो जन हर रस रसना चाखे कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुखी उज्जल भया कानड़ा महला पंजवा राधो स्वामी राधो तुझे स्वामी अपने।

राजन प्रभ अपनाय कातुरहाउ आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कूट कसमल जात गुणरमंत दुख नासै रिद।

सह सुमाद सुमायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम सुमराथि अथायो। कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लायो। करणा महला पंजवां।

अंग संग काया संत सरसन शरण गई पूर्ण अवनासी आने उपाव थकत नहीं करसन कर गलिए नानक जने अपने आंध घोर सा।

बल बले बल बले बल गए पहले पैसंत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान तेरो केहरो जित जतन कर विचार अनक दास।

कापर भांत बनावे गो नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरे फिर आवे गो माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर गुल कुलावे गो पाप बिकार मनूर सब भारे बिख दुत्र तरियो ना जावो जावे गो पहु बैराग पया है बोहथ गुर खेवट सब

कर ठाकुर मैं सतगुर भसम लगावे गो कारण महला चौथा मन हर रंग रत गावे गो पै पै त्रास पाए है निर्मल गुरमत लाग लगावे गो रहाओ हर रंग राता सदबरागी हर निकट तिना कर आवे गो तिन की पंख मिलता जीवा कर कृपा आप देवावे गो दुबदा लोभ लगे से प्राणी मन कोर रंग नया वै गो फिर उल्ट्यो जन्म हो वै गुर बचनी गुर पुरख मिले रंग लावे गो इंद्री दसे दसे पुन तावत त्रैगुणिया खिन ना टिकावे गो सतगुर परचय बसकत आवे मोख मुक्त सो पावे गो ओंकार को रब रहे आसो एक समाहे समावे गो एक रूप एक बरंगे सब एकत बचन चलावे गो गुरमुखे को एक पछाता गुरमुख होए लखावे गो गुरमुख जाए मेले निज महली अनह शब्द बजावे गो जी जंद सब सिष्ट उपाय गुरमुख सोभा पावे गो

को तोर ले किया हो मल्ला चौथा रबिया दयाल हर आपे कर सो हो हर आपे आप वर्तदा हर जिवड़े बुर न कोय जो हर प्रभाव है सोती है जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाई आभ्यंत प्रभु हर सोए नान गुरब हर सलाया तन मन शीतल होए पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू कटकट हर रंग रंगना सब त्याव तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाचे सब मंग मंगना सिर उठा कुर सब तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुख हो रिकी के सहरे जित पावे सब फल फल ना सलोक मल चौथा हर नाम त्याय मन दुर्गे पावे मान जो छो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल्प पाप सब कटिए ओमे चुके गुमान गुरम कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपत हर प्रभ जो नानक जाप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित है नाम जबत दुख जाए जिन कपूर लिखिया तिन मन वस्याए सतगुर भाणे जो चैल है तिन दल दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पतियाए जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाए पौड़ी

लावणी जिन होहि दयाल तिन सतगुर मेले मुख गुरमुखार समझावणी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख भुख सब लह जावणी। श्लोक महला चौथा हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उतार विच संगत हर प्रभ वरतदा बजो सब दे विचार मन हर हर नाम त्याया बिख हमें कड्डी मार जिन हर नाम न चेत्यो तिन जिव जन सब हार गुर तुटे हर चेताया हर नामा हर उतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। महला चौथा हर किरत उत्तम नाम है बिच कलयुग करनी सार मत गुरमत किरत पाई हर नामा हर उतार बड़भागी जिन हर त्याया तिन सो प्यार भंडार बिन नावै जे कर्म कमावणे नित होमें होए खुआर जल हस्ती मल ना वालिए सिर भी फिर पावै सार हर मिल सतगुर दे कर मन वसे निरंकार जे न गुरमुख सुन हर मनिया जल नानक तिन जयकार पौड़ी।

मन पानी। हर कथा सुनावो मेरे गुरु सुख मेरे हर प्रभ कथ कहानी, क्यों पाइये क्यों देखिए मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी। हर मेल दिखाए अब हर गुर बचनी नाम समाणी, तिन विटो नानक वारिया जो जपदे निर्वाणी। श्लोक महला चौथा। हर प्रभते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे, मैं प्रभ सजन पाया जन नानक सहज मिले। महला चौथा। गुरमुख अंतर संत है मन तन नाम समाए,

ते मिल नहीं हर रोल है, वडभागी संगत मिल है, गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्याव हो नर नारायणो नारायणो, जत चुका जम चगड़ चुकोल। श्लोक महला चौथा, हरजन हर हर चौदया, सर संध्या गावार, नानक हरजन हर ले उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अकी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखान, जे कर दूजा देख दे जन नानक, काढ़े दिचान पौड़ी, जल थल महियल पूर्ण अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो कर सो होई। मात पिता सुध प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई, घट घट अंतर रब रहया, जपहु जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट साब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मेले से सजना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाह तू, लुड लुड दर गए। मन महला चौथा, हर तू

सुबासियों चलन काकर साज फरीदा रात कथूरी वंडिया सुत्या मिले न पाओ जिन नाना निंदरावली तिना मिलन कवाऊ फरीदा मैं जनया दुख मुझको दुख सबाया जागे उच्चे चढ़ के देखिया ता कर करे हायागे महला पंजवा फरीदा पूम रंगावली मंज वसूला बाग जो जन पीर नवाजया तिना अंचना लागे महला पंजवा फरीदा उम्र सहावड़ी संग

प्राण मान दान जग जोन हित चीत दे लै लै पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहुं तेले रखे नरारी तावन पावन कूड़ कमावन ए विद करत औद तन जारी कर्म तर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पशु पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जोन परम उत पारी किन पल चसा नाम नहीं सिमरेउ दीन नानाति प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन खान पान मीठ रस भोजन अंत की बारे होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मनीषर रसक रसक ठाकर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोजत गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनख देव और दानम एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन का ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन कौ जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग ब्रंग करत परम मोह कै कूप गोपार परयो है एता गब आकाश न मावत विष्टा अस्त किरम उदर परयो है उदरे परयो है दैद सताए महा बिख्याखो पारतन सीन अज्ञान हरे वह जोबन बीत जरा रोग रस्यो जम धुंदन डन मृत मरयो है अनक जोन सकट नरक पुंचित सासन दुख गरत गरयो है प्रेम भगत उदरयो से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद तंत्र मंत्र पर दुख हारी सर्व रोग खंडने गुणकारी काम क्रोध मद मत्सर तिशना बनस जाए हरे नाम उचारी इसनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हिरदे प्रभ तारी साजन मीत सका हर बंधप जी दान प्रभ पान प्राण अदारी ओट गई स्वामी समर्था नानक दास सदा बलहारी आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंध्यो न जात बिदे मन दर्श मग पावक जरयो न जात रहो जन तूड़ लग नीर न साक सबोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह सिधे हरे नाम खग उदक कर लागे बहु पांति बिचरे अनक सतरक बहु खटुआ पसम लगाए तीर्थ बहु परमति सुखम दे बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाई सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाटे कर थटुआ सवये महले पहले के एक ओंकार सतगुरु परिचादन।

मथुरा को प्रभ श्रभ में अर्जुन गुर भगत के हित पाई रहे हो मिल राम सिंह।

परतासरदा गुरु अर्जन का हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं भाग ललार उदार तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र मैं बूढ़ थे

भगति भगत बोलोचदय प्रभलोचा पूर्व में लाए हर प्रभु प्रवाह कित खाद।

गुर की पौड़ी जाय चढ़ाय करम परापत होय अंतराय बस गुर शब्द विचार कोय नानक शब्द।

वाह वाह सतगुरु निर्वैर है जिस निंदा स्थल होए वाह वाह सतगुरु सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुरु निरंकार है जिस अंत न पारावार वाह वाह

खाणी हर हर नित कर रसना कह कछु ना जानी चिजन का हिरले आ माया बोलन भय रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो हर कच्चे बाणी गुर का

गर्म कमाया के कर्म कमाया तो दूसरी राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चितला।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया में ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पात साहिया दी जोत